अच्छा जनाब, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से कि आप FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी की आवाज सुन रहे हैं, तो दिल की गहराइयों से आप लोगों को खुशामदीद भी कहते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपने दोस्त, अपने प्रेजेंटर, अपने मेजबान ताहिर जमान को। और अगला एक घंटा नहीं बल्कि जो है ना 2 घंटे सिर्फ गानों का नहीं होगा, बल्कि एहसासात का भी होगा, खूबसूरत बातों का भी होगा, दिल की मुख्तलिफ जो है ना हालतों के हवाले से हम बात करेंगे, बारिश की बात करेंगे, खुशबू खुशबू और खुशबू की बात भी होगी, खुशबू और जिंदगी के खूबसूरत रंगों का सफर होगा। जी मेरे दोस्तों, जिंदगी में कितनी अजीब एक चीज देखने को मिलती है, और जिंदगी वैसे भी जो है ना बहुत ज्यादा अजीब है भाई। कभी ये हमें जो है ना बेशुमार खुशियां देती है, कभी ये खामोशियां मतलब जो है ना दे देती है, कभी खामोश इम्तिहानों से गुजारती है, कभी हंसाती है, कभी आंखें नम कर देती है, मगर एक बात जरूर है कि जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना इंसान को सिखाती जरूर है। जो लोग हर हाल में मुस्कुरा लेते हैं वही असल में जिंदगी जीना सीख जाते हैं जी। इसलिए जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा कर सकते हैं करें आप, क्योंकि शुक्रगुजार दिल जो है ना हमेशा सुकून में रहते हैं जी। और जनाब, मौसम के हवाले से अगर बात करें, सवाबी और सवाबी के आसपास के मौसम के हवाले से, तो आज का मौसम तो वैसे मतलब जो है ना हाय, आज का मौसम तो जैसे जो है ना दिल की जबान बोल रहा हो, बाहर बारिश बरस रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मिट्टी की खुशबू फिजा में मतलब जो है ना महक रही है, और ऐसे मौसम में रेडियो सुनने का अपना ही मजा है। देखें, बारिश सिर्फ जो है ना बादलों से गिरने वाला पानी नहीं होता, ये अल्लाह ताला की रहमत भी होती है जी। दिल की धड़कन भी है, यादों की दस्तक भी है, और मोहब्बतों की खामोश जुबान भी है। और ना जाने जो है ना कितने लोग इस वक्त खिड़की के पास बैठे होंगे, कोई चाय का कप जो है ना अपने हाथ में लिए बैठा होगा, कोई सफर में होगा, कोई अपने घर में होगा, कोई घर की छत पे होगा, और कोई जो है ना खामोशी से हमारी आवाज सुनते हुए जो है ना बारिश के कतरों को भी महसूस कर रहा होगा। और मेरी ये बात याद रखिएगा कि बारिश का एक अजीब रिश्ता है दिल के साथ, बारिश का एक अजीब सा रिश्ता है दिल के साथ। कुछ लोगों को ये अपने बचपन की याद दिलाती है ना, कुछ लोगों को किसी अजीज की, कुछ लोगों को अधूरी ख्वाहिशात की, और कुछ लोगों को किसी ऐसे शख्स की जिसका नाम जो है ना आज भी या अभी भी मतलब जो है ना दिल में जिंदा है, मैं कहीं महफूज है। बारिश जब बरसती है तो सिर्फ रास्ते नहीं भीगते जी, बाजू का जो है ना दिल के वो कोने भी भीग जाते हैं, जहाँ बरसों से कुछ यादें खामोश बैठी होती है। और मेरे दोस्तों, हमारी ये महफिल सिर्फ मेरी महफिल नहीं है, बल्कि आप लोगों की भी महफिल है, इसमें आप भी आएंगे। यहाँ सिर्फ जो है ना मेरी आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि आप लोगों के एहसास भी होंगे। आपकी मुस्कुराहटें भी होंगी, आपकी दुआएं भी होंगी, आपके मैसेजेस, आप लोगों के पैगाम भी होंगे। इस महफिल का जरूर हिस्सा बनिएगा, और ये कि इसलिए आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आप कहाँ सुन रहे हैं, मौसम कैसे है, और इस खूबसूरत बारिश में आपको क्या मतलब जाना पसंद है या किसकी याद आती है। अच्छा जी, आज के एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौजू भी है, मौजू के हवाले से मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा यहाँ पे, देन फिर जो है ना आगे चल के मजीद बात करेंगे हम। क्या कुछ लोग क्या कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं मेरे दोस्तों। कुछ लोग जिंदगी में बिल्कुल बारिश की तरह आते हैं जी, उनकी आमद जो है ना दिल को एक जबरदस्त एहसास भी दिलवाती है, और उनकी आमद से एक चीज देखने को ये भी मिलती है। चले, मैं ट्रैक साथ साथ आप लोगों के लिए चेंज करता हूँ, और ये वाला ट्रैक प्रोग्राम में अगर शामिल कर दें तो क्या ख्याल है, बारिश हो रही हो, बारिश बरस रही हो, और साथ में ये वाला ट्रैक ना हो, हाय ये तो अपने आप के साथ जुल्म होगा भाई, अपने आप के साथ ज्यादती होगी। करार रश, क्या कह रहे जी, क्या बात। मैं कहता हूँ ना कि बारिश के हल्के हल्के कतरे जो है जमीन पर जैसे पड़ते हैं ना, उसी तरह ये ट्रैक भी है भाई। मतलब बारिश के कतरे जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता करार के साथ जो है ना आते हैं ना, तो उसी तरह ये ट्रैक भी बंदे को मतलब जो है ना एक तरीके से पूरा फुल फ्लैश

वो वर्गेफ जी डोंट गो एनीवे लिसनर्स, मैं कुछ थोड़ी सी उर्दू में बातें करना चाहूंगा। ये तो खैर पश्तो में है, मैंने कुछ थोड़ी बहुत जो मेरे माइंड में बातें आ रही थी वो मैंने कर दी। जी उर्दू में मैं कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं जनाब यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि बारिश हो रही हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, मिट्टी की खुशबू फिजा में मतलब जाना महक रही हो, लेकिन अजीब बात यह है कि बाज़ुकात इतनी खूबसूरत बारिश के बावजूद जो है ना दिल को करार नहीं आता, दिल को चैन नहीं आता। इंसान खिड़की के पास खड़ा तो होता है, खिड़की के पास खड़ा होकर देखता तो रहता है, दूर तलक जो है ना फैले बादलों को महसूस करता है, मगर फिर भी दिल बेचैन रहता है, क्योंकि दिल का करार मौसमों से नहीं एहसास से जुड़ा होता है। कभी कभी इंसान ना अपने सुकून की तलाश में बहुत दूर निकल जाता है ना, कोई पहाड़ों का रुख कर लेता है, कोई समंदर किनारे जो है ना जाकर बैठ जाता है, कोई लंबे सफर पर मतलब जो है ना चला जाता है या लंबा सफर मतलब इख्तियार कर लेता है, और कोई बारिश में तनहा भीगता रहता है, और कोई कमरे में बैठ कर सिर्फ यादों से बातें करता रहता है। वो हर जगह जो है ना एक ही चीज ढूंढता है, करार मतलब चैन। और करार के हवाले से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये ट्रैक चेंज करते हैं जी, एंड ये वाला ट्रैक अगर शामिल कर लिया जाए तो ये ठीक रहेगा। हाँ क्या कहते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा जी, मैं क्या बात कर रहा था, बारिश के कतरों में एक अजीब सी ताकत होती है ना, ये सिर्फ जमीन को नहीं भिगोते जिस तरह मैंने पहले बात की थी, ये दिल के बंद दरीचे भी जो है ना खोल देते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ जो है ना ये कि अच्छा यहाँ ये बात मैं कहना लाजम समझता हूँ कि कुछ लोगों को किसी अपने की याद आती है, कुछ अपनी अधूरी ख्वाहिशात को याद करते हैं, और कुछ बे अख्तियार जो है ना दिल ही दिल में ये कह उठते हैं या दिल ही दिल में ये बात कहते हैं कि करार आ जाए, अब बहुत इंतजार हो चुका है। क्योंकि बाज इंतजार ऐसे होते हैं जो बरसों खत्म नहीं होते हैं, और बाज यादें ऐसी होती हैं जो हर बारिश के साथ फिर से जिंदा हो जाती हैं ना मेरे दोस्तों। हकीकत यह है कि करार किसी इंसान में नहीं है बल्कि इंसान के अपने दिल के इत्मीनान में होता है। और शुक्र करना जितना भी हो ना, तो मामूली सी बारिश भी जन्नत का मंजर दिखाई देने लगती है। और ये कि लेकिन एक चीज है, अगर दिल बेसकूना हो मतलब दिल में कोई सुकून वगैरह ना हो, तो फिर मौसम भी जो है ना कितना ही असीम क्यों ना हो, इंसान के अंदर एक खामोश खामोश तूफान चलता रहता है। और साथ साथ यहाँ ये बात भी करना चाहेगा ताहिर जमान के, और कभी कभी इंसान की जबान पर सिर्फ जो है ना एक ही दुआ रह जाती है कि ए मेरे दिल अब तो करार आ जा, बहुत भटक लिया, बहुत फिर लिया, बहुत इंतजार कर लिया, अब थक चुका हूँ। शायद इसी लम्हे इंसान को ये एक एहसास होता है कि दुनिया के हर सुकून से बड़ा सुकून अल्लाह के करीब होने में है।

माशाल्लाह जी, प्रोग्राम मौसम जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आयजा नूर कैसी है? सालार कैसे है? सालार भी ठीक है जी, आयजा भी ठीक है। आपकी आवाज बहुत नाइस है जी, और मौसम की तरह भाई मेरा अच्छा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आयजा नूर से मिलूं, मैं उसके लिए गिफ्ट्स लूं, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लूं। मुझे आयजा नूर से मिलना है प्लीज। अच्छा, प्रोग्राम के बाद आप इस नंबर पे जिस पे मैसेज किया है ना आपने, इस पे रابطہ कर लीजिएगा। आपकी इतनी ख्वाहिश है अगर तो। मेहर हमारे साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर, आपने हमारे साथ दिया। और मेहर कहती हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हैप्पी रखे जी, आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डियर ताहिर भैया सिंगे खी टिक टाक, ये छोटा लाहौर नजगमन मैसेज रागले दे आओ खैसे टपेज गमन प्रोग्राम के शामिल का कोशिश बको जी। सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? खैरियत से हो? आवाज सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगे जी, और बारिश का मजा डबल हो गया है। और बारिश में चैन तो तबाह हो जाता है। आपका प्यार और आपका साथ हो। हा, मी आयशा अली फ्रॉम सवाबी। आयशा अली हमारा साथ दे रही है सवाबी से, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो आसमान गदुन ना मुंग सास प्रोग्राम तडेर पे इंतजार ना सी जी, और सास प्रोग्राम के अंदर मुंग डेर पमीना और डेर पमीना और मनना शुक्रिया जी। भैया माँ हम गमने एक पराठे गमने पोखड़ा और प्रोग्राम था ना सीओ माशाल्लाह वल्लाह प्रोग्राम के अंदर सब मजा की सब फन के या वाओ पखेर ना सलाम ना सिंगे खी ठीक ठाक ये मौसम खरीदी यख मौसम के कम दे नो तास्ता डेर ज्यादा प्रोग्राम के वेलकम वायु मिस यू नीम कप कम दे नो मार रहा का ची स्टाफ कम स्टाफ शांत शम उफ यो मौसम हमारी दे आओ बल आवाज हमारी दे आओ बल करार रशा सॉन्ग वही वही वही वही वही नो अच्छा मैसेज रख ले थी दावज कम सुख वही करना दाव अच्छा मैसेज करी टपे प्रोग्राम के शामिल हो आओ टपे टपे टपे टपे टपे यस दस मौसम के दस सिटअप ये खून के खा हाँ लगता सुसो वाड़े चिनोर हमारी अंदाज के जगमदन खबर शुरू होगा माँ ब्याव बर्दाश्त न करी शीनो दबगना नशी

बिल्कुल खाक आवाज FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी जस्तासु कुर्बा आकिब जान जदुनिया मजे सासु मैसेजेस तरफ से राजम सासु मैसेजों ने कहा ले शेजी और अखबारी मौजूद गया सास मुंगतरा कहा ले शेजी 0319 15 17 094 बांदे

0: सुपर 938 280 495 नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो. अस्सलाम वालेकुम.
1: यार
0: हागा दे ची पसख्त के पकार शी हद जी सो को निचर था ना
1: तोला खपरवान तेरे ना तावी की ची अमीर भी
0: हाँ
1: के गरीब शी नो हर सारे तेरे ना बेदाशी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. स्टडी मशी पखेर अगली दे तवाय मसो को निचर था ना
1: बस खेर खेर भी अभिजान भाई संग नजीर खान प्राम के दून कारखाने
0: नजीर खान संग खे बराबर है
1: जरूर तबियत खदे खेर दे खेर सली साफ दासी पांग राचोली
0: दाची दो घंटे उस दो घंटे चिजरा अगले मुता रेडियो से टाइम लगो लेदार तू आया
1: रेडियो में बिल्कुल सर न लगे तकरीबन या 10 मिनट रहना शुरू तीर शुरू जामी लगो ले दे.
0: हा हा हा हा हा सही ठीक शो दार तू है नजीर भाई मुंगसरा प्रोग्राम की यवदत सवाल दे
1: वही जी इंशाल्लाह जवाब बता मिला
0: नन वो ता सवाल नहीं दे रही दिल से
1: सवाल नहीं हो रही
0: दिल से बस दाखी जवाब रहा करा
1: अरे लस मिनट टोटल लगी टोटल लस मिनट
0: खा लगा तो अच्छे पागिम लस मिनट लगी हाँ
1: लस मिनट लगी आउट
0: सही सही जाखिरा पूरे प्रोग्राम और पता भाई लगी हाँ
1: चल इंशाल्लाह ज़माना तरफ ना मलंगशा मलंग था और मेरे बादर काका था गंदब देरो की और कासम था आरिस था सुलेमान था शिरिंदार काका था और मुश्ताक काका था او نصیب شاہ کا کا تا پچنگ لے گیا طول او دی اتلا کی عظمت خان تا طول رون تا دیش پی سلامونا دلی اللہ پامان.
0: وعلیکم السلام دلی اللہ.

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा।
2: ओहो, फमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा।
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स, फोन 09382732 65।

0: रेडियो दिलबर, अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर, लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: दादी रेडियो दिलबर, स्तासु दजरावास।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिलबर आपके संग संग।
2: पल चैनल रेडियो दिलबर
3: रेडियो दिलबर रेडियो
4: योर फैमिली चैनल इन योर ऑन टाउन।

जनाब पदवेम नंबर वाले मंगसरा आया काटलंग रोड मेंबर कलीना जिने लावा हो प्रांदुला भाई मंगसरा पशप गुठनु बांध राखले हो प्रांदुला भाई तेमच हिम्मत पन बायले हा जाब के हो प्रांदुला भाई दे पारा आहा